इज द एंड. नहीं मेरे भाइयों, क्या पता कि अल्लाह ताला आपको आजमाया हो और ये आपकी कामयाबी की इब्तिदा हो. किस आजमाइश में आप सब्र करें, यकीन करें अपने रब पे, आपका ईमान बढ़ जाए और उसके इवज में आप कामयाब हो जाएं और उसके इवज में अल्लाह ताला आपको ऐसा रोजगार दे, ऐसी नेमतों से नवाजे कि आपने कभी सोचा ही ना था. बीवी अच्छी नहीं है, सब्र करें, उसे समझाएं, उसे नसीहत करें, अल्लाह ताला से यकीन करते हुए कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है. और कसरत से अमल सालिह करते रहें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे. सब्र करते रहें और याद रखें, जब यह दुआ दिल से निकलती है और यकीन और ईमान बुलंद दर्जे पर पहुंचता है तो फिर दुआ की कबूलियत भी आसान हो जाती है, इस्तिजाबत के करीब हो जाती है. मेरे भाइयों, मखलूक का दिल, इंसान का दिल अल्लाह ताला दो उंगलियों के बीच में है, जब चाहे फेर दे. यह ना कहे कि इतने सख्त दिल है, अब मैं नाउम्मीद हो चुका हूं, अब यह ठीक हो नहीं सकती. नहीं, मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल गलत है. अल्लाह ताला से, अल्लाह तक रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो. ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, उम्मीद रखो अपने रब से. खावंद अच्छे नहीं, खावंद कोई मुसीबत है, आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से. बाद ऐसे फोन आए हैं कहते ऐसा मुझे अल्लाह ने खावंद दिया है कि जब भी घर आता है हमने कभी उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा. सख्ती से बात करना, बार बार पर झिड़कना, हर बात पे मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, सब कुछ दिए, एहसान जतलाना हर वक्त, बच्चों को मारना पीटना, छोटी सी बात बच्चों को मारना, घर जहन्नम बना हुआ है. क्या करूं, पांच बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, किसी के तीन बच्चे हैं, परेशान है, रहती हूं मुसीबत है, तलाक ले तो उससे बड़ी मुसीबत है, कहां जाओगे. आजमाइश है, अल्लाह ताला से यकीन रखो, यह आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से. सब्र करो, दुआ करो, अमाल सालिह कसरत से करो, अल्लाह ताला कामयाबी. जब ये आपके दिल के अंदर बात बैठ जाएगी कि ये आजमाइश मेरे रब की तरफ से है और मैं अपने रब को राजी करना है और इस मकसद को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करेंगी, तो अल्लाह ताला इस शख्स को हिदायत दे देगा या इससे छुटकारा हासिल हो जाएगा. अल्लाह ताला उससे इससे बेहतर आपको कोई और खावंद अता फरमाएगा. अब देखें, यह आजमाइश है अल्लाह ताला की तरफ से. बुरी औलाद है, नाफरमान औलाद है, अगर ऐसी औलाद है जो नाफरमान है तो उस पर सब्र करो. हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, मैंने बचपन से ही तरबियत ना की हो, अब दूसरी गलती ना कर बैठूं कि उसे घर से निकाल दूं. देखें, घर से निकालना आसान है, दो लफ्जों के घर से निकल जाओ, लेकिन बच्चे बाहर जाके क्या क्या करेगा, मुआशरे में कोई अच्छा अमल जाके करेगा. जिसने घर में आग लगाई हुई है वह मुआशरे में बाहर जाके आग लगाएगा. एक शख्स का यूरोप से फोन आया था, कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरा बेटा है, इतनी उसने तंग किया अब वो हाथ उठाने पर भी आ गया है, क्या करूं उसका मैं, मेरा दिल कहता है उसे घर से निकाल दूं, मेरे सारे हरबे इस्तेमाल किए हैं. मैंने उसे कहा, देखो घर से निकालना तो आसान है, दो लफ्जों में कैसे निकल जाएगा, लेकिन मुझे यह तो बताओ आखिरी मरतबा कब आपने अपने बेटे को सीने से लगाया, ईदों में बस. बेटा बड़ा ही सही, आप ही का बेटा है, एक वक्त था उठा के सीने से लगाते थे, अब वक्त बड़ा हो गया तो बार सीने से ना लगा. खामोश. मैंने कब, उसे याद ही नहीं. मेरे भाई अपने बेटे को मैंने कहा सीने से लगाओ, उसके लिए दुआ करो, सब्र करो, अमाल सालिह कसरत से करो.